हजार ओ गने हार पड़ रहे ने आप कौन को कहे सर मैंने आप कौन का कोड ने दस और ओ मुगाना रहने सर ओ नका सक सक ये सक सक ना ना कौन ओके जी।